0: और मैं पाचू
1: इटी यूनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटी यूनो और रेडियो
2: Yeah, yeah, yeah, just land secret.

0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो यूं ये करे वेर क्वारो
0: बीमार मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो
2: Soldiers vs. the Rose Soldiers, a.k.a. Kang Boy in town, alongside Mr. Diggy, Diggy, Diggy, Mr. Nirwan there.